0: हम विविध भारती नागपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। हम अनु प्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल के आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर

ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन। भर्तृहरि के नीतिक शतकम के अनुसार विद्वान होने पर भी दुष्ट मनुष्य सर्वथा परित्याग करने योग्य होता है, क्योंकि जैसे मणि धारण करने से सांप की भयंकरता कम नहीं होती, वैसे ही विद्या से अलंकृत दुर्जनों की स्वाभाविक दुष्टता का नाश भी कभी नहीं होता। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 202। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। आज श्रृंखला की 6 कड़ी आप सुन सकेंगे। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम 7 बजे से।

सुबह 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के, 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक महबूब खान पर। आज सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत आप सुनिएगा डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 रात्रि 11 से रंग तरंग, दिन में 12:05 से यादों की महफिल।

दोपहर 1 बजे से सुरीला सफर, दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। सखी सहेली इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे से। इसके अंतर्गत अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत के चलमल नारियल अम्मा की कहानी, मुझे कुछ कहना के अंतर्गत गेमिंग का दलदल, उपयोगी टिप्स के अंतर्गत किचन टिप्स। संवादक हैं सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से हेलो फरमाइश, संवादक हैं मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने। झरोखा शाम 6:30 से, 6:35 शाम संध्या रंजन। जयमाला सुनवाएंगे शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए के अंतर्गत अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। रात्रि 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत नाटक यादों की परछाइयां भाग 4, लेखन सुरेंद्र गुलाटी का, निर्देशन दीनानाथ। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9 बजे से आपके लिए, और रात्रि 10 बजे से सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ढलते।

Herat. अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करने का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग धनाश्री, आज प्रस्तुत है राग दरबारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता में इस श्रृंखला को पेश करते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है। आज प्रस्तुत कर रही हूँ स्वाति तिरुनाल महाराजा द्वारा हिंदी में रचित एक और कृति, और आज का राग है हिंदुस्तानी पद्धति का दरबारी कानड़ा। इस बंदिश के बोल हैं, देवन के पति इंद्र, तारा के पति चंद्र, विद्या के पति गणेश, दुख भार हारी। वैसे तो राग और भाषा उत्तर भारतीय है, लेकिन रचनाकार दक्षिण के और बंदिश का विभाजन भी कर्नाटक पद्धति के अनुसार पल्लवी और अनेक चरणों के रूप में किया गया है। इस कृति को आपके सामने रखने से पहले जरा साहित्य के बारे में दो शब्द कह दूं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते समय जो कहते हैं, उसी को दोहराते हुए महाराजा स्वाति तिरुनाल कहते हैं, देवन के पति इंद्र, तारागण में सबसे उत्तम है चांद, मुनिजन में अग्रणी है व्यास ऋषि, और वाद्यों में सबसे उत्तम है वीणा, रागों में सबसे सुंदर है दरबारी कानड़ा, तो ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे सुहावना है, पक्षियों में अति सुंदर हंस पक्षी है, तो मनुष्यों में अवधवासी राम सबसे उत्तम है, पहाड़ों में हिमालय, तो तीनों लोक के पति पद्मनाभ अर्थात विष्णु हैं। महाराजा स्वाति तिरुनाल ने अपने कृतियों में पद्मनाभ इस शब्द को मुद्रा के रूप में जोड़ा है। कभी पद्मनाभ के जगह कमलनाभ, जलजनाभ भी कहते हैं, लेकिन अर्थ तो सबका एक ही हुआ, यानी कि सब विष्णु के अनेक नाम हैं। तो अब सुनिए राग दरबारी कानड़ा में स्वाति तिरुनाल महाराजा द्वारा रचित एक हिंदी भाषा की कीर्तना।

0: राग दरबारी पर आधारित ये गीत हमने लिया था फिल्म मेरे हुजूर से, आवाज थी मन्ना डे की। स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। उसी कड़ी में आज आप सुन रहे थे राग दरबारी कानड़ा।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजजंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में अंदाज़ फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में आन फिल्म का गाना। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में

0: बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अमर फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हम विविध भारती नागपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं एक निवेदन सुनिए, आज सुबह ठीक 10 बजे आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, और आज का विषय है ऑस्टियोपोरोसिस, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे तज्ञ डॉक्टर आरबी कलमकर। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए। फोन नंबर इस प्रकार है 2560101 और 2529266। तो सुनना ना भूलिएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आज सुबह ठीक 10 बजे।
0: फिल्म का नाम अनमोल घड़ी।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में बरसात फिल्म का गाना। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत

0: लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुरैया की आवाज में बड़ी बहन फिल्म से गीतकार हैं कमर जलालाबादी और संगीतकार हैं हुस्नलाल भगतराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में मदर इंडिया फिल्म के गाने के साथ. शकील बदानी है गीतकार और संगीतकार है नौशाद.

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध क्या गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया।

बीमार मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है। ये गाना अभी आप सुन रहे थे तीसरी गली फिल्म से, आवाजें थी हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था इसे और संगीत से संवारा था चित्रगुप्त ने। लीजिए अब सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा और दत्ताराम का संगीतबद्ध किया गाना, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम संतान।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में प्यार की राहें फिल्म का गाना। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीतकार कनु घोष। अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में मैंने जीना सीख लिया इस फिल्म से। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और तर्ज है रोशन की।

मैंने जीना सीख लिया इस फिल्म के गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम विविध भारती नागपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से। हम अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: Ma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन

0: अटेंड किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाश भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा

0: वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है संवेदना पर। आज के आधुनिक दौर में हमारी संवेदनशीलता कहीं खोसी गई है। हमें इंसान बनाने वाली वो भावनाएं, वो संवेदनशीलता बहुत ही कम देखने को मिलती है। हम इतने आक्रामक और संवेदनहीन हो गए हैं कि हमें एआई कहना गलत नहीं होगा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हम कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन हम में भावनाओं की कृत्रिमता बढ़ती जा रही है। एक ऐसा दर्द पनप रहा है जो कि तब होता है जब शरीर से तो कोई सामने हो पर आत्मा से गायब हो।

0: है।
1: उपनिषद में लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग करके ही भोग करो। जो स्वयं छोड़ता है वही दूसरों को दे पाता है। लेकिन आज मदद करने की भावना जैसे खत्म ही हो गई हो। व्यक्ति खुद पर आई समस्या के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा करता है, लेकिन वहीं दूसरों को परेशान देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। जिनके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, कोई वजह होती है, कोई लक्ष्य होता है, वो लगभग किसी भी कैसे को सहन करते हुए खुद को जीने और दूसरों को जीवन देने के रास्ते तलाश कर ही लेते हैं।

संस्कृत में कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, यानी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। हम सोचते तो बहुत हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कार्ल जंग ने कहा था, सबसे तीव्र संघर्ष यदि पार कर लिए जाएं, तो अपने पीछे ऐसी सुरक्षा और शांति की अनुभूति छोड़ जाते हैं जिसे फिर आसानी से विचलित नहीं किया जा सकता। और फ्रेडरिक नाइट्स की माने तो जो हमें मार नहीं पाता वो हमें और अधिक मजबूत बना देता है। और महाभारत में भी कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, यह आत्मा ये ऊंचाई कमजोरों को नहीं मिलती।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

हम विविध भारती नागपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद।

0: म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: श्रोताओ नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के हेलो मेरी पसंद इस प्रोग्राम में. और आज का सफर आप तय करेंगे आपकी रेडियो सखी भावना के साथ. दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो तपन में भी चांदनी बिखेर दे, ऐसे गाने जो धूप में भी ठंड दे और रूह तक सुकून दे. ऐसे ही आपके मनपसंद सदाबहार गीतों के साथ आपसे गपशप करेंगे. तो देखते हैं कौन श्रोता है फोन पर, लेते हैं ये पहला कॉल. हेलो मेरी पसंद.
2: हाँ नमस्ते मैडम.
1: हाँ कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं सोनल बात कर रही हूँ नरेंद्र नगर से.
1: सोनल जी क्या करती है आप?
2: हाउस वाइफ हूँ और टेलरिंग का भी काम करती हूँ.
1: कौन से प्रकार के कपड़े सिलती है?
2: सूट सिलती.
1: लेडीज सूट?
2: हाँ लेडीज सूट.
1: तो ये काम करते करते आपको हमारे कार्यक्रम सुनना पसंद है?
2: बहुत बहुत बहुत पसंद है. सुबह से लेके शाम 5-6 बजे तक रेडियो शुरू ही रहता है. सखी सहेली, हेलो फरमाइश, फोन वाला कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है.
1: हाँ यानी फोन इन कार्यक्रम आप सुनते हैं ज्यादातर.
2: हाँ.
1: अच्छा, तो अभी धूप बहुत है तो आप हाँ. घर में रह के क्या करती है?
2: बस वही नींबू पानी वगैरह पीते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और बेल का जूस पीते हैं.
1: यानी आपको क्या लगता है कि गर्मी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
2: ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और मैंने लगाई भी हूँ 5-6 पेड़ घर. हाँ. गार्डन है घर के सामने, वहाँ लगाई हूँ और भी लगाने वाली हूँ अभी बारिश में.
1: हाँ बारिश में पेड़ लगाना और बाद हाँ. में उसका जतन करना ये बहुत बड़ी हाँ, बात होती है. सोनल जी बताइए आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: मुझसे शादी करोगे का सुना दीजिए.
1: तो सोनल जी सुनते हैं मुझसे शादी करोगे इस फिल्म का, आपके पसंद का ये गीत.

0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं साधना बोल रही हूँ नागपुर से।
0: हाँ साधना जी, बोलिए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं सब?
0: मैं भी मजे में हूँ। बताइए, क्या करती हैं आप?
1: मैं घर ही में रहती हूँ मैडम, गाना सुनते हुए भारती दिन भर।
0: हाँ, काम करते करते गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है आपको?
1: हाँ मैडम, खाली घर है, अकेले रहते हैं
0: अच्छा।
1: तो विविध भारती और मैं दोनों साथ में पूरा दिन बिताते हैं।
0: इसके अलावा आपको क्या छंद है?
1: सुनने का, गाना गाने, ऐसे गुनगुनाने का हल्का सा बस, और अपना टाइम वेस्ट जाने से अपना बिजी रखते हैं।

0: भारती में।
1: हाँ तो धूप अभी बहुत है, तो ऐसे में घर में आप कुछ धूप में जो सुखाने वाली चीजें हैं वो बनाती है क्या? जैसे पापड़ है, मूंगवड़ी है।
0: हाँ, मूंग की दाल की बड़ी, मोठ की दाल वड़ी, और चने के दाल की वड़ी, आंबट वड़ी, पापड़, चावल के 5-6 प्रकार के पापड़ बना के देती हूँ लोगों को आर्डर पे।
1: अच्छा, यानी आपका जो टाइम है वो भी अच्छे से कट जाता है और पैसे भी आते हैं थोड़े फार घर में। तो साधना जी, आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: कुछ कुछ होता है।
1: हाँ, कुछ कुछ होता है फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: शाहरुख खान का काजोल और रानी मुखर्जी।
1: ठीक है साधना जी, आपके पसंद का कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत सुनते हैं।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। कौन श्रोता है फोन पे?
1: हाँ हेलो मैडम।
0: हाँ हेलो।
1: मैं अर्नस्ट फैक्ट्री जवाहरनगर भंडारा से इंदु मेश्राम बोल रही हूँ।
0: हाँ इंदु जी बोलिए, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैडम, हाँ बहुत अच्छी हूँ।
0: अच्छा, रहना ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है।
1: हाँ मैडम,
0: हाँ तो आप दिन भर क्या करती हैं?
1: दिन भर तो कुछ नहीं, अभी हम दोनों रहते हैं यहाँ,
0: हाँ
1: पति पत्नी और बच्चे हैं दोनों बाहर। और मेरे को ये कहना था मैडम,
0: हाँ
1: मेरे बहू का बर्थडे है आज, तो नैना मेश्राम, तो
0: अच्छा
1: मुझे एक गाना सुनना था,
0: बता दीजिए।
1: आखिरी लड़ी फिल्म का सुना दीजिए।
0: ठीक है, तो इंदु जी बताइए कि
1: हाँ
0: हमारे कार्यक्रम आप सुनते हैं कौन कौन से?
1: हाँ पूरे सुनते हैं मैडम, सुबह से लेके शाम तक, रात तक 11 बजे तक रहता है सारे।
0: और कौन सा कार्यक्रम ज्यादा पसंद है?
1: हेलो सनमाइस वगैरह ये मेरी पसंद, और मनचाहे गीत सभी प्रकार के, और
0: सभी कार्यक्रम आपको पसंद है,
1: हाँ सभी कार्यक्रम पसंद है।
0: बहुत अच्छी बात। तो इंदु जी सुनते हैं आपके पसंद का खिलाड़ी फिल्म का ये गीत।

0: हेलो मेरी पसंद।
1: हाँ जी मैडम, नमस्कार मैडम। मैं गिरीश
0: नमस्कार।
1: करनेवाल बात कर रहा हूँ।
0: हाँ गिरीश जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं टेलर हूँ मैम। मैं बुटीक से कपड़ा ला के घर से सिलता हूँ।
0: यानी आप टेलरिंग का काम करते हैं, तो कौन कौन से कपड़े?
1: हाँ, लेडीज टेलर।
0: लेडीज टेलर है।
1: हाँ जी मैम।
0: अच्छा, तो ये टेलरिंग का काम करते करते हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं और कौन सा कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सारे पसंद है मैडम, पुराने से लेकर नए तक के। मैं सुबह चालू होता हूँ, रात को 11 बजे बंद करता हूँ रेडियो।
0: आपको आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना है?
1: आज के कार्यक्रम में 90 के दशक के गाने सुनाएंगे मैम।
0: हाँ सुनाएंगे, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: एक है अनारी फिल्म का गाना, 1993 का।
0: हाँ,
1: इसमें है वेंकटेश और करिश्मा कपूर का।
0: ठीक है गिरीश जी, सुनाते हैं आपके पसंद का गीत।

0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: हाँ, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। बताइए, आपका नाम बताइए।
1: मैडम, मेरा नाम मयूरी है और ना मैं फोन करती हूँ मैडम, पर मेरा कभी गाना नहीं आता।
0: ठीक है मयूरी जी, आज आपका फोन लग गया, ये भी बहुत बड़ी बात है ना।
1: हाँ,
0: तो बताइए, क्या करती है आप?
1: मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फार्मेसी कर रही हूँ।
0: अच्छा, फार्मेसी का पढ़ाई कर रहे हो, यानी आपको दवाइयों में इंटरेस्ट है, यानी साइंस पढ़ी होगी ना आप।
1: हाँ,
0: तो आगे चलकर क्या बनने की इच्छा है?
1: अभी तो ग्रेजुएशन हो जाए फिर देखूंगी मैडम। अभी
0: पढ़ाई करते करते हमारे कार्यक्रम भी सुनती हो?
1: हाँ, मुझे सब बहुत पसंद है, कार्यक्रम सखी सहेली और ये फोनिंग कार्यक्रम और हेलो डॉक्टर।
0: काफी
1: मुझे हेलो
0: कार्यक्रम सुनती
1: डॉक्टर
0: हो,
1: बहुत पसंद है क्योंकि उसमें बहुत
0: जानकारी मिलती है।
1: इन्फॉर्मेशन देते हैं ना हेलो डॉक्टर में, कोई भी डिजीज के बारे में।
0: हमारे सभी कार्यक्रम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो अभी
1: हाँ,
0: आपने बोला कि सखी सहेली कार्यक्रम आपको पसंद है, तो क्या आपकी भी सहेली है? बहुत सहेलियाँ होंगी,
1: हाँ है मैडम।
0: है ना? तो उनके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है?
1: हाँ, अच्छा लगता है मैडम, पर ज्यादा घूमते फिरते नहीं क्योंकि पढ़ाई रहती है और दिन पूरा पढ़ाई में थोड़ा निकल जाता है, एग्जाम्स वगैरह सब, इसलिए।
0: मयूरी जी बताइए कि आप आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: प्रेम ग्रंथ मूवी का दिल देने की रुत आई।
0: ठीक है मयूरी जी, आपके पसंद का प्रेम ग्रंथ फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: लिखना पढ़ना।
1: छंद बहुत है आपको। तो योगेश जी बताइए कि आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म जय हो से सुनवा देंगे, तेरे नैना बड़े कातिल मारे डालेंगे।
1: ठीक है योगेश जी, जय हो फिल्म से ये गीत आपके लिए।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी, हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: वहां तक हमारे कार्यक्रम सुनाई देते हैं?
1: हाँ, मोबाइल ऐप पे आता है ना।
0: हाँ, मोबाइल ऐप होने से हमारे सभी कार्यक्रम आप सुन पाते होंगे।
1: जी,
0: तो योगेश जी, आप क्या करते हो?
1: हमारा तो मूल काम तो खेती बाड़ी का है।
0: तो आपने खेती में क्या क्या लगाते हो?
1: अभी फिलहाल तो खाली है, गर्मी का
0: हाँ।
1: सीजन 3 महीना खाली रहता है। अभी बरसात में धान लगाएंगे और धान कटाई के बाद गेहूँ।
0: यानी आपकी
1: जी
0: फसल अच्छी होती होंगी।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो योगेश जी, उसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: घूमना फिरना,

0: हेलो
1: हेलो।
0: कार्यक्रम, हेलो मेरी पसंद, बोलिए कौन श्रोता है फोन पे?
1: बहुत आनंद हो रहा है, आपने मेरा कॉल पिक कर लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिंकी बात कर रही हूँ।
0: अच्छा रिंकी जी, बोलिए क्या करती है आप?
1: मैम हाउसवाइफ हूँ, अभी घर में कुछ कुछ नया कैरी का, आम का, मैं और मेरी बेटी ट्राई करते रहते हैं
0: बहुत अच्छे,
1: घर
0: यानी
1: में।
0: आपकी बेटी को अभी से आप प्रशिक्षण दे रही है किचन का?
1: हाँ अभी वो 10th में है, पर कुछ ना कुछ जरूर बना लेती है, उसको बहुत पसंद है खाना बनाना।
0: हाँ अभी छुट्टी होंगी, गर्मी की छुट्टियां हैं तो टाइम पास भी हो जाता है।
1: जी बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। मैम
0: थैंक यू
1: सारे
0: मैडम।
1: प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद करती हूँ मैडम। हेलो डॉक्टर सुनती हूँ, हेलो मेरी पसंद सुनती हूँ, नीलावर सारी, हेलो सुंदर नगमे सुनती हूँ, बेला के फूल सुनती हूँ, मधुमालती सुनती हूँ। मैम बहुत अच्छा
0: यानी
1: लगता
0: विविध
1: है
0: भारती के सभी कार्यक्रम आप सुनती हो?
1: जी। काम के साथ साथ रेडियो भी शुरू रहता है तो बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा है रिंकी जी, को बाहर घूमने का कुछ प्लान है क्या?
1: अभी देखती हूँ कैसा जमता है, पर बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है। हैदराबाद होकर आई हूँ अभी, अप्रैल महीने में हम लोग गए थे तो शॉपिंग भी कर ली, बहुत घूम लिया अभी।
0: अच्छा रिंकी जी, आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हाँ जी मैडम, मुझे धुरंधर 2 इस फिल्म का हम प्यार करने वाले ये गीत सुनना है।
0: रिंकी जी सुनते हैं धुरंधर 2 फिल्म का आपके पसंद पे ये गीत।

तो दोस्तों, ये था आज का फरमाइशी प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद। आज का कार्यक्रम आपको कैसे लगा जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, धूप से बचें और सुनते रहें मन को सुकून देने वाला फरमाइशी प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद, जिसके जरिए आप सुनेंगे आपके पसंद के नए गीत। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपको हमें फोन करना होगा शुक्रवार 12 बजे से 12:45 के दरमियान। हमारे फोन नंबर 69400067256010 तथा 25292966। तो आज का सफर यही तक। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग मिला सारिका पाठक से, और अब इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सतीश रेवे के साथ मैं आपकी रेडियो सखी भावना अब आज्ञा चाहती हूँ। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

हम विविध भारती नागपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक निवेदन सुनिए। आज गुरुवार दिनांक 28 मई को सुबह 10 बजे आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय है ऑस्टियोपोरोसिस और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे तज्ञ डॉक्टर आरबी कलमकर। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए। फोन नंबर्स इस प्रकार है 2560101 और 2529266। तो सुनना ना भूलिएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आज सुबह ठीक 10 बजे।

अभी आप सुन रहे थे स्निग्धोजीत भौमिक की आवाज में छिपकली फिल्म का गाना, गीतकार सोहम मजूमदार और संगीतकार मीमो। लीजिए अब सुनिए भूत बंगला फिल्म का गाना। विशाल मिश्रा, नकश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, कुमार के बोल और प्रीतम की है तर्ज़।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता, सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे अमजद नदीम। आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: FM बँड 100.6 मेगाहर्ट्सवर विविध भारतीचं हे नागपूर केंद्र आहे. श्रोतेहो, सकाळचे 9:20 झालेली आहेत. ऐकूया प्रायोजित कार्यक्रम.
1: श्रोताओं, आज की इस भागदौड़ प्रतिस्पर्धा और बेचैनी से भरी दुनिया में हम अक्सर सफलता को पद, पैसा और प्रतिष्ठा से मापते हैं, लेकिन क्या हम कभी ठहर कर खुद से पूछते हैं असली सफलता क्या है? इंसान को सच में मुक्ति किससे चाहिए? और क्या दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है या फिर ये हमारी ही अनजानी मानसिक जंजीरों का परिणाम है? आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान है जो इन सवालों को सिर्फ छूते ही नहीं बल्कि हमारी सोच की जड़ों तक ले जाते हैं. IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र, निवृत्त IAS अधिकारी और आज भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर चेतना की एक नई दिशा दिखाने वाले ह्यूमैनिटी के शेरपा U2 यानी उज्जवल उके आज हमारे साथ मौजूद हैं. उज्जवल उके जी का जीवन एक अनोखी यात्रा है. बाहरी सफलता के शिखर तक पहुंचकर भी उन्होंने उस शिखर

0: को छोड़कर भीतर के हिमालय की ओर कदम बढ़ाए। एक समय वो नीतियां बनाने वाले प्रशासक थे और आज ऊटू द शेरपा के रूप में वो मन के भीतर चलने वाले प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। उनकी विकसित की हुई माहोपेक्षा, जिसे वो महान त्याग या गहन क्षमा के रूप में समझाते हैं, कोई धर्म, पंथ या परंपरा नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव से उपजी चेतना की अनुशासनात्मक प्रक्रिया है। आज वो हमारे साथ इस यात्रा पर दुख के मूल कारण और आंतरिक मुक्ति की संभावनाओं पर खुलकर बातचीत करेंगे। नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद
0: सर। आपने कहा है, बार बार कह रहे हैं कि माहोपेक्षा इज अ वे ऑफ लाइफ।
1: जी
0: हाँ, जिंदगी जीने का तरीका है
1: जी।
0: तो क्या इसमें एक ध्यान पद्धति भी आती है? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जीने का तरीका है, लेकिन एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अनुभव कर सकता है इस चीज का?
1: देखिए ऐसा है कि छोटे छोटे प्रयोग बताता हूँ मैं आपको। आप सुबह उठते हैं, आपके माँ बाप क्या कहते हैं, बच्चे सुबह उठोगे तो वॉक को चले जाओ, थोड़ा सा वर्जिश कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। छोटी छोटी चीजें हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग कुछ और एक्सरसाइज कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि सुबह उठते ही यदि आप थोड़ा बाहर निकलते हैं या थोड़ा समय मिला तैयार होकर बाहर निकले, तो आप बीते हुए कल के किन्हीं कम से कम 3 लोगों को आप याद करिए जिनकी वजह से आपके जीवन में थोड़ा सा तो कुछ बढ़िया हुआ है कल के दिन। 3 लोग तो जरूर मिल जाएंगे।
0: ग्रैटिट्यूड
1: अपने मन से रखिए। आप मन में सिर्फ ये करिए कि भाई उसने कल खाना बहुत अच्छा बनाया था, वो मेरे शरीर में मैंने खाया तो वो मेरे शरीर को फायदा हुआ है, तो उसके तरफ में आप एक थैंक्स बोल सकते हैं या एक फीलिंग लग से अपने ही मन में। तो वो आपका उबर का ड्राइवर या जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उसने आपको मंजिल तक पहुंचा दिया, तो चलो भाई उसने भी मेरा काम किया है, उसके भी याद कर सकते हैं आप। तो ऐसे आप जब अच्छी चीजों को याद करेंगे कि दूसरे लोगों ने मुझ पर परोपकार भी किए हैं, तो आपके मन के अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि मोबाइल रखे हुए हैं, आप जूतों की बात करते रहिए 4-5 दिन, तो देखेंगे कि आपको गूगल में या कहीं पे जूतों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं फेसबुक में।
0: बिल्कुल, हाँ।
1: ये क्यों होता है?
0: हाँ।
1: ये इसलिए होता है कि आपके जो मोबाइल है आपने उसको माइक को ऑन करने की परमिशन दे रखी है, तो आप जो भी बात कर रहे हैं वो सुन रहा है। वो सुन करके वो कंप्यूटर में जब डालता है तो एक एल्गोरिदम पकड़ता है कि मैडम आजकल जूतों की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही एल्गोरिदम उसने पकड़ा 4 दिन में, तो बराबर आपको वो जूतों की एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू करता है। इसी तरह से हमारा मन चलता है। आप अगर उसको बोलेंगे कि बड़ा दुख है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत कठिन है, बहुत चैलेंज है, तो उसी एल्गोरिदम का पकड़ के आपकी जिंदगी में चैलेंज, दुख, ट्रबल, हर चीज लाना शुरू कर देगा। आप उसको अगर बार बार अच्छी तरह से बोलेंगे सुबह उठ करके कि भाई कल बहुत अच्छे लोगों ने मुझे मदद की और मैंने भी लोगों के लिए अच्छा काम किया, जब इस तरह से आप सोचेंगे कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे एल्गोरिदम पकड़ लेगा। तो आपका अचेतन मन जो है वो आपको पॉजिटिव और अच्छे अच्छे रिजल्ट लाना शुरू कर देगा। तो आपके हाथ में आपने क्या सोचना है, बर्बादी सोचनी है या आबादी सोचनी है, आप सोच लीजिए।
0: सही है, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी इसी वजह से।
1: जी हाँ बिल्कुल।
2: चेतन और अवचेतन मन की परतों को समझने का अनोखा अवसर, सफल जीवन की दिशा और तनाव मुक्त जीवन शैली का सार जानने के लिए O2 यानी उज्जवल उके सर की माहोपेक्षा कार्यशाला में अवश्य शामिल हों। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7030911302 7030911302। संपर्क नंबर एक बार फिर 7030911302 7030911302। हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए www.usp.org.in।
0: कि अपने मन को छोटे छोटे पॉजिटिव प्रॉम्प्ट्स दीजिए।
1: प्रॉम्प्ट्स दीजिए और माहोपेक्षा में हमारा पूरे कोर्सेज हैं, क्योंकि वो डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है इंसान का हमेशा नेगेटिव होता है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। ये मेरे हाथ में चश्मा है, ये मैं नीचे गिरा दूंगा, एक सेकंड में टूट जाएगा। आप बताइए इसको बनाने में कितना समय लगा होगा? कम से कम 1 दिन तो लगता है ना, लेंस बनाना है, चश्मे का फ्रेम बनाना है। तो बनाना कठिन होता है और तोड़ना आसान होता है। नेगेटिव इज इजी, पॉजिटिव इज डिफिकल्ट। तो हमारी जो डिफॉल्ट थिंक

0: थिंकिंग है हमेशा नेगेटिव होती है। हम हर चीज में पहले बोलते हैं पता नहीं क्या बात है, कुछ खतरा है क्या, कोई ये होगा क्या, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो जो डिफॉल्ट सेटिंग है, जो हमेशा बार बार भाग भाग कर नेगेटिव में जाता है, कुछ भी खटका हो तो आप चौंक के देखते हैं, अरे कोई चोर आया क्या, घर में चूहा तो नहीं आया। आप ये नहीं सोचते हो कि अरे वाह खटका हुआ है, कोई बहुत अच्छी बात होने वाली है, जरूर कोई मेहमान आए हैं या कोई मेरा मित्र आया, ऐसा नहीं सोचते आप।
1: नेगेटिव ही विचार
0: हमेशा
1: आ रहा
0: पहला नेगेटिव विचार बाय डिफॉल्ट आता है। हम मदद करेंगे आपको, आपका डिफॉल्ट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो
1: डिफॉल्ट
0: आप
1: सेटिंग चेंज करना
0: जी बिल्कुल। तो यही महोपेक्षा का पूरा उद्देश्य है, इसमें ही हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि चुटकी बजाते होता है, जैसे कोई किताब पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, उसके लिए उसको ऑपरेशन थिएटर पे जाकर के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सर्जरी कैसे करनी है, उसी तरह से इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हो जाता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है बट आसान नहीं
1: जैसे आपने
0: है।
1: बोला कि उड़ान भरनी है तो थोड़ी ट्रेनिंग तो करनी
0: जी
1: होगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पर इन छोटे छोटे बदलाव से रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आ सकते हैं।
0: बिल्कुल 100% आएगा, और आपकी जिंदगी में सिर्फ बदलाव ही नहीं, आपके हैप्पीनेस में आनंद में इजाफा होगा, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। सबसे बड़ी बात, मेरे पास आए हुए कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मोटापे को कम कर दिया है,
1: अरे वाह
0: क्योंकि मोटापा जो होता है ये शरीर का कम और मन का ज्यादा
1: मन का
0: होता है,
1: ज्यादा है
0: तो हम उसके
1: बिल्कुल
0: मन का बोझ जब कम करते हैं तो शरीर का बोझ अपने आप कम हो जाता है। तो ये तो मतलब ये तो बहुत आसान चीज है हमारे लिए, बट दूसरे भी बहुत सारी चीजें हम करते हैं, बट बेसिक क्या है आइडिया, परोपकार होना चाहिए। अगर सामने वाला आता है उसकी कुछ शारीरिक कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसकी अपने आप ही ठीक हो जाए, उसको कोई टेंशन है वो कम हो जाए, तो और क्या चाहिए।
1: सही
0: हम
1: है।
0: तो कहते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लीजिए, सब कुछ कीजिए, जो भी है ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन मन चंगा करने के लिए तो आना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि मन चंगा होगा तो दवाई का असर ज्यादा अच्छा होता है।
1: मन चंगा तो सब
0: बिल्कुल।
1: चंगा।
2: चेतन और अवचेतन मन की परतों को समझने का अनोखा अवसर, सफल जीवन की दिशा और तनाव मुक्त जीवन शैली का सार जानने के लिए O2 यानी उज्जवल उकेसर की माहोपेक्षा कार्यशाला में अवश्य शामिल हों। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7030911302, 7030911302। संपर्क नंबर एक बार फिर 7030911302, 7030911302। हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए www.usp.org.in।
1: श्रोताओं, आज हमने एक ऐसे सफर की झलक देखी जो बाहरी सफलता से भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। उज्जवल उके या O2 ह्यूमैनिटी के शेरपा हमें कोई मंत्र नहीं देते बल्कि एक सवाल देते हैं, क्या आप सच में मुक्त हैं? माहोपेक्षा कोई पलायन नहीं है, ये है जागरूकता, स्वतंत्र सोच और भीतर की यात्रा का आमंत्रण। मैं आपसे विदा लेती हूं, लेकिन शायद आज से आपकी अपनी आंतरिक यात्रा शुरू हो चुकी हो। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं से बातचीत की और रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत आसान से उदाहरणों से आपने समझाया कि जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव कैसे आ सकते हैं। फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।
0: धन्यवाद। थैंक यू।
3: श्रोते हो, आताच आपण प्रायोजित कार्यक्रम ऐकलात। FM बँड 100.6 मेगाहर्ट्झवर विविध भारतीचं हे नागपूर केंद्र आहे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

के पास ज्यूती स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे। महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता, सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: अद्भुत करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, भर भर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

विवेक हरिहरन और शाश्वत सचदेव की आवाजें थी। कुमार ने लिखा एक गीत और संगीतकार थे शाश्वत सचदेव और फिल्म थी उरी। श्रोताओं, मधुमालती इस कार्यक्रम में आगाज किया था इस देशगान से। अगला गीत सुनते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म से है। उदित नारायण की आवाज है, आनंद बख्शी ने लिखा गीत और संगीतकार हैं जतिन ललित।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें थी। जावेद अख्तर ने लिखा ये गीत और संगीतकार थे अनु मलिक और फिल्म थी विरासत।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है. भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं. विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर.
2: मधुमालती ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं. श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं तेजाब इस फिल्म से. अलका याग्निक की आवाज है, जावेद अख्तर ने लिखा एक गीत और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, उदित नारायण और अलका याग्निक तथा कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें थी। समीर ने लिखा एक गीत और संगीतकार थे जतिन ललित।

खामोशी इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना। कविता कृष्णमूर्ति, श्रद्धा कृष्णम और साथीदारों की आवाजें थीं। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा ये गीत और संगीतकार थे जतिन ललित। श्रोताओं, मधुमालती ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनते हैं अंजाम। इस फिल्म से ये गीत है, पूर्णिमा की आवाज है, समीर ने लिखा ये गीत और संगीतकार है आनंद मिलिंद।

अंजाम इस फिल्म से ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना। पूर्णिमा की आवाज थी, समीर ने लिखा ये गीत और संगीतकार थे आनंद मिलिन। श्रोताओं मधुमालती ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। एक निवेदन सुनिए। हेलो मन भवन, इस कार्यक्रम के विषय पर यह निवेदन है, अगर आपको आपके मनपसंद मराठी भक्ति गीत, भाव गीत या फिल्मी गीत सुनना है तो आप हमें फोन कर सकते हैं हर गुरुवार दोपहर 12 से 12:30 तक। हमारे फोन नंबर्स है 2560101 और 2529266। तो हेलो मन भावन इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आज शुरू हो जाएगा दोपहर 12 बजे से, तो फोन करना ना भूलिएगा हेलो मन भावन इस कार्यक्रम के लिए।

देवदास इस फिल्म से गीत कविता कृष्णमूर्ति और श्रेया घोषाल की आवाजें, हसरत बद्र ने लिखा एक गीत और संगीतकार हैं इस्माइल दरबार।

हम विविध भारती नागपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक निवेदन सुनिए। अगर आपको आपके पसंद के मराठी फिल्मी गीत, भावगीत या भक्ति गीत, नाट्य गीत सुनना है तो आप हमें फोन कर सकते हैं आज दोपहर 12 से 12:30 तक, और कार्यक्रम है हेलो मन भावन। हमारे फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2560101 और 2529266। तो फोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12 से 12:30 तक कार्यक्रम हेलो मन भावन के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने

0: उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में दो दो मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में एक एक मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: चैन है।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
2: जाने
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तरह थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत,

0: रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
3: तुमसे अच्छा

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आजकल जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर चुके होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप रास्ते में विविध भारती भी सुन रहे हों, तो चलिए हम भी आपके साथ हो लेते हैं। विविध भारती के साथ सुरीले सफर में आज चलते हैं हम और आप साथ साथ। यूं कह लें कि गर्मियों में पहाड़ों का जो मौसम होता है श्रोताओं, आशिकाना होता है। छोटी छोटी सी पगडंडियां ऊंचे आसमान से बातें करती, देवदार के पेड़, खुला खुला नीला आसमान, एक अलग वादियों में खो जाते हैं हम सभी कहीं। और तमाम खुशियां जो हम अपने साथ कर लेते हैं, थोड़े से समय में हम अपनी मुट्ठी में इन खुशियों को भर लेना चाहते हैं। ऐसे में गीतों का साथ हो तो क्या कहने। इबारत की जहां तक बात है श्रोताओ, जो टेक्स्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए आपको फेसबुक पेज पर दिया, उसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा होगा प्रोग्राम में, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं, www.facebook.com/vbsmumbai के इस पेज पर लॉगिन कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। और अब आज का टेक्स्ट या पैसेज, जो भी आप कहें या इबारत कहें, उसे आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों का हुस्न बेमिसाल होता है। राहत और सुकून से भरे रास्ते पुकारते चले जाते हैं। हर चेहरा यहाँ चांद है, तो कहीं चांद से रोशन चेहरे भी हैं। सादगी से भरपूर जीवन और यहाँ के लोगों की मासूम मुस्कुराहट, मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है। धुंध का पर्दा हटा तो पर्वत के पीछे गांव का नजारा था, जहां इस मौसम में

सैलानी खूब आया करते हैं, हमारे गांव भी कोई जरूर आएगा और कहेगा प्रीत तुरी सांची। परदेसी ने फल कपड़े और टोकरियां भी खरीदी, किसी सपनों की रानी के जैसे ये बर्फीले प्रदेश और यहाँ के लोग डोरी बुनकर प्यार बांध लेते हैं। परदेसी एक दिन चले जाते हैं एक और मुलाकात का वादा करके। तो ये थी आज की इबारत और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं, साथ ही आपने जो गीत चुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे और भी श्रोता इन गीतों के बारे में क्या लिखते हैं, इन शब्दों को कैसे चुनते हैं, और हमारे जो श्रोता नए हैं वो भी हमें अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोताओं, पहाड़ों की सैर को लेकर आप अपनी बातें, आप अपनी यादें, या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं। और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज की इबारत पर्वतीय क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य का विहंगम चित्रण है। सफेद बर्फीली चादरों में सिमटी धुंध के नेपथ्य में लुका छिपी करती पर्वत करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध के घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है। यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है, इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी के बाद जो है इस पर है परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है। और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है, किंतु वे परदेसी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वती गांव के लोगों के सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों जंगलों घुमावदार रास्ते के का बेहतरीन नज़ारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, नेपथ्य में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ खास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं ज़रूर। और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना। और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे सनम फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपन ईयर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो, मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियां बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है, वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहां के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहां पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप जरूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर जरूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक खास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियां और वहां का सादगी भरा मासूम सा मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएं, मनोकामनाएं, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गांव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं जब आप गए ऐसे किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

एसएच बिहारी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, काश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओ हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बुनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक, गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज़ क्या आपने इन जगहों से कभी खरीदी है। वैसे हमें खरीदना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हाथ से बनी हुई होती हैं और इन चीज़ों को ख़रीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक श्रोता लिखती हैं कि आज मौसम पहाड़ों, चांद, रास्ते, परदेसी, बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहां की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियां और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं, पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोताओ, और वहां पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं, तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है। और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहां फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं, तो वो

आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी, शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं। श्रोताओं तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर की खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेशियों से मिलना, मनमोहक दृश्य यकीनन सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

0: मुझे देख कर आपका।
1: जॉय मुखर्जी और साधना पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि संगीतकार के बारे में। जी हाँ, ये गीत जब सुनाई देते हैं श्रोताओं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा ही एक चित्रण हमारी ऐसे ही एक बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखती है, गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना, मोहक दृश्य, यकीनन सब कुछ अच्छे लगते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ये विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं प्रकृति की एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकृति है, जो अपनी विशालता, शांत वातावरण और अलौकिक दृश्य

खुशियों से हर किसी के मन को असीम सुकून और आनंद से भर देती है। इन खूबसूरत पहाड़ों की ढलान घने देवदार पाइन और ओक के पेड़ों से ढके रहते हैं, जो प्रकृति की मखमली हरी चादर जैसे दिखते हैं। साथ ही पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलने वाले जलप्रपात और कलकल बहती हुई नदियां पहाड़ों के शांत वातावरण में एक मधुर और प्राकृतिक संगीत घोल देते हैं। जो भी यहाँ आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अगर फिरदौस बरवे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, ये कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। और एक श्रोता और लिखते हैं कि पिछली गर्मियों में मुझे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पर्यटन स्थल खजियार जाने का अवसर मिला। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं मन को बहुत सुकून दे रही थी। वहां का सुंदर मैदान और छोटी झील देखने लायक थी। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया। खजियार की ये यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा बन गई। आप ये एक बात बताएं श्रोताओं कि आपने इतनी जगहों पर घूमा है, आपने यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं वो इसी तरह से रहें और प्रकृति की गोद में ऐसे ही रहें, ये हमें देखने में क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये साफ सुथरी रहती हैं। और ऐसी क्या आपने कोशिश की तो ये हमें ज़रूर बताएं। और कौन सी ऐसी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी? एक और श्रोता ने लिखा है, गर्मियों में पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं।

संजय खान और साधना नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओं, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती हैं। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दियों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज्यादा सुकून देता है। जो सर्दी का मौसम सा होता है, वो पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है। आवाज़ आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ हमें बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहाँ जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि हिमालय की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताज़ा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है, तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं, बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

महबूबा, फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटे बर्फ की चादरें में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतः ही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है। वहां अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हाँ, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहाँ की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें। और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गाँव का है, वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है? ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थीं? पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं श्रोताओं?

गीतकार आप बता दें इस गीत के, प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर आ रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ, मुझे पहाड़ों पर जाना, वहां घूमना, वहां के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूं तो पहलगाम, शिलांग और खजियार, बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओं, या कोई यादगार चीज़ जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफ़र में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओं, वो एक देश है वहाँ के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना।

हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, यहाँ हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात अगर हम करें, या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है, और भी खाने पीने की चीज़ों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं। और अगर हम बात करें शिमले की बात करें, या फिर हम बात करें मसूरी की बात करें, कश्मीर की बात करें, या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसी जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफर क्या आपने किया है हमें बताएं।

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी, सब बाहर निकले, हाय वो क्या नज़ारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और वहाँ की शीतलता मन को सुकून पहुँचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोताओं, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था।

आप कलाकार बता दें श्रोताओं, और मेरे सनम फिल्म का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, वो गीत में जो किनारे वृक्ष दिखाई देते हैं देवदार के हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत था विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है संवेदना पर। आज के आधुनिक दौर में हमारी संवेदनशीलता कहीं खोसी गई है। हमें इंसान बनाने वाली वो भावनाएं, वो संवेदनशीलता बहुत ही कम देखने को मिलती है। हम इतने आक्रामक और संवेदनहीन हो गए हैं कि हमें AI कहना गलत नहीं होगा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हम में भावनाओं की कृत्रिमता बढ़ती जा रही है। एक ऐसा दर्द पनप रहा है जो कि तब होता है जब शरीर से तो कोई सामने हो पर आत्मा से गायब हो।

0: पर भी होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है।
1: उपनिषद में लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग करके ही भोग करो, जो स्वयं छोड़ता है वही दूसरों को दे पाता है। लेकिन आज मदद करने की भावना जैसे खत्म ही हो गई हो, व्यक्ति खुद पर आई समस्या के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा करता है, लेकिन वहीं दूसरों को परेशान देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। जिनके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, कोई वजह होती है, कोई लक्ष्य होता है, वो लगभग किसी भी कैसे को सहन करते हुए खुद को जीने और दूसरों को जीवन देने के रास्ते तलाश कर ही लेते हैं।

संस्कृत में कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। हम सोचते तो बहुत हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कार्ल जंग ने कहा था, सबसे तीव्र संघर्ष यदि पार कर लिए जाएं, तो अपने पीछे ऐसी सुरक्षा और शांति की अनुभूति छोड़ जाते हैं जिसे फिर आसानी से

नहीं किया जा सकता। और फ्रेडरिक नाइट्स की माने तो जो हमें मार नहीं पाता वो हमें और अधिक मजबूत बना देता है। और महाभारत में भी कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, यह आत्मा ये ऊंचाई कमजोरों को नहीं मिलती।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया

0: द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
1: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
3: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़

0: देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का

0: किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का, लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफी ने। श्रोता और सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

Hallelujah.

0: ही सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस
1: सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तो तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना।
1: तो
0: है। क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए,
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दे।
1: आज के विषय है हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़ी सी पहले मैं खुद ही फंस गई थी बिल्कुल, और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है,
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, यानी बकरीद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से, और साथ ही

0: और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है, तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
1: और आप क्या करें,
0: एक गीत सुनते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से यार, कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
1: बहुत बहुत
0: मुबारक।
1: मुबारकबाद देते हैं
0: जी,
1: जी।
0: और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट

0: आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खासतौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।

0: हाँ तो सुनाली, कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये.
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो वे अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल.
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है।
0: सच में.
1: वैसे ही कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना, जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं हमें ना उनके
0: बिल्कुल.
1: काम में।
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है, कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए. हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं.
1: जी
0: आज हम बात
1: के
0: करेंगे
1: चेलम्मल
0: जी.
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की, और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है, और चेलम्मल दक्षिण

0: अंडमान के रंगा चांग की रहने वाली है और चिल्लामल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, यानी जैविक तरह की उन्होंने
1: जी
0: खेती की।
1: बिल्कुल, वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
0: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
1: बिल्कुल, और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
0: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
1: बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेल्लामल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
0: और चल्लमल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है। साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चल्लमल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
1: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए,
0: जी
1: तो वो परागण के लिए कि बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी,
0: देखिए
1: तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया। तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षक की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
0: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चिल्लामल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
1: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
0: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
1: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
0: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
1: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए।
0: और अब एक संदेश सुन ले।
1: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है, तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
2: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखियां वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
2: बिल्कुल, सुनते
1: हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: बिल्कुल,
0: रहा
1: वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा था ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75% आए
1: हाँ ये तो होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: सौ
0: बोलना
1: झूठ बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात है,
0: उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं अब हमारे

0: जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
1: जी, एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है, कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं, इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूं, करता कुछ नहीं है, तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। उन्हें सिखाए, और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का जो मनोबल है ना वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए।
1: क्या बात है,
0: ताकि एक हमारे आगे कर सकें।
1: जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं, और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं, और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
1: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं।

हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी
1: सहेली
0: सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें, तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
0: जी
1: वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
0: और
1: इस
0: अब
1: तरह
0: क्या
1: से।
0: करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए ना कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें ना कि उनके परिणामों पर। इन्हें मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करे, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि सोचते हैं हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती हैं, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे।

0: कि किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई है, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं, एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगाता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने
1: बिल्कुल
0: लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जो श्रोता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी, अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं
0: जी
1: और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर
0: और
1: पड़ता
0: ये
1: है।
0: जो गेमिंग जो है ना, जो होती है ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी
1: तो
0: उन्हें
1: भी
0: कुछ पॉइंट्स
1: हाँ
0: अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं।
1: जी
0: तो ये बच्चे और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, दीपा सॉरी
1: जी कोई नहीं
0: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
1: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुने,
0: सुनते हैं गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाज कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहा ना किसी के
1: मन में रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
0: जी।
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा तक,
1: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
0: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: जिंदगी की रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई,
0: धीमी हो गई
1: क्योंकि
0: है।
1: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है, या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर हैं तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है, तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं, सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है
0: जी।
1: तो कभी कभी होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: तो यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड,
1: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपकी वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे, ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना, जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना, तो फिर उसकी आपके फोन के स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं, अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे की टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
1: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा

0: चीजें ऐसी मत रखिए जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है। तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको इंटरनेट।
1: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें, यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल इन्हें।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीजें जो है जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिखकर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उन्होंने कहा कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या बात है। तो बधाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग तो लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है। तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसका ध्यान रखें, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे, और अति हर चीज के लिए
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जे। तो भाई अति से दूर रहे, कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें?
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती आज की मुलाकात
1: बस इतनी
0: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, भाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारे पक्के लिसनर हैं आप।
1: यही जान लीजिए कि हम इस समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6 साल जब से, यानी हम बहुत संभाल हैं, सब से सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे हाँ, आप जी, क्या जी, करते हैं, खेत में काम करते
1: जी,
0: हैं?
1: जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, इस समय गर्मी टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले आते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं, अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते
1: हैं? गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जो जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम। खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: ये मैडम? खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ। कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेहसागर के आसपास और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है।
0: जी, आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट
1: जी
0: जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं।
1: जी
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या?
0: जी,
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: वाह, तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ, उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ। और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ मैं।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी
1: तो
0: हो रही है।
1: पता ही है कि मरुस्थली इलाका है, तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के उसमें। अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं। आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापिस यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागीत।
1: छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती हैं और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का

0: उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका लेने, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हम जोली फिल्म से हैं, आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: बस बढ़िया है, यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाएं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने

0: श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी जुड़े हुए हैं मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ, 1980 से ही सुन रहे हैं। वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रांझा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है। नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों

0: मैडम इसका अध्यात्म महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियां देना।
1: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
0: जी
1: बताइए अपने बारे में क्या करते हैं आप?
0: हम सिलाई करते हैं मैडम।
1: अच्छा सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
0: नहीं बाहर गोडाउन पे जाके।
1: दिन भर सिलाई का काम होता है?
0: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
1: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
0: हाँ खुराक में
1: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
0: जी
1: तो क्या सिलते हैं आप?
0: मैडम हमारा घनी बेग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है गेहूँ दाल उसको रिपेयर करते हैं हम कुएं और पीसते हैं।
1: अच्छा जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा में, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
0: जी जी।
1: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
0: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
1: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? टैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
0: हाँ मैडम थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
1: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
0: जी जी।
1: कट फट जाती है। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
1: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का बहुत बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरे के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बनकर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, जिससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सैटेलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, या नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर पॉप हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया। और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है। क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा, चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी जी
0: जी, तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के फनकार सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: माँ, मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं TRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम मूवी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ, हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ पे।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है, उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा, एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ, सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए, तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुनाए गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छलिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये की।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-2462-28670-288 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 02240024662 साथ ही 022-28670-288 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छाया की।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहां, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों। खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात

अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं हैं।

कुछ रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसने आपको कभी चुना ही नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दर्शन का लाभ पर्वतारोही की अपेक्षा वो अधिक अच्छी तरह से ले सकता है जो किसी दूर समतल क्षेत्र में खड़े होकर उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

0: जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।
1: बिल्कुल

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं संयोगों से जन्म लेती है। न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही। और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है। मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ। काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका अंतिम आधार।

और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ। इसे गाया है अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने। आइए अब सुनते हैं नसीब फिल्म का ये गाना।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, देश की सुरीली धड़कन। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 MHz पर। शाम के 6 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धरमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया।

0: हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्ण पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
3: आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। सीबीएसईच्या 12वीच्या पूर्ण परीक्षेचं पुनर्मूल्यांकन करण्याची केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा। नागपूरसह राज्यभरात बकरी ईदचा सण उत्साहात साजरा। येत्या 31 मे ते 7 जून दरम्यान नागपुरात खासदार क्रीडा महोत्सवाचं आयोजन आणि वर्धा इथं सर्वाधिक 45.6°C इतक्या कमाल तापमानाची नोंद। आता सविस्तर बातम्या। सीबीएसईच्या 12वीच्या परीक्षेच्या पुनर्मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत काही त्रुटी निदर्शनाला आल्यामुळे आता पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू केली जाईल अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली। आज नवी दिल्लीत सीबीएसईच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी ते बोलत होते। सर्व विद्यार्थ्यांच्या शंकांचं निरसन केलं जाईल तसंच मूल्यमापनातल्या विसंगती संदर्भातल्या समस्यांचं निराकरण केलं जाईल आणि त्यावर उपाययोजनाही केल्या जातील असं प्रधान यावेळी म्हणाले।
4: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
3: देशभरात आज ईद उल अजहा अर्थात बकरी ईद भक्तिभावानं साजरी होते आहे। यानिमित्त विशेष नमाज

है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। आज फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी देशभक्ति के साथ, तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मिशन मजनू से। इसे गाया है सोनू निगम ने, गीत मनोज मुंतशिर का है, संगीत रोचक कोहली का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत, गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम में अगला गीत है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। फिल्म का नाम है किंग अंकल। गीत लिखा इंदिवर ने, संगीत से सवारा राजेश रोशन ने।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाजों में है। फिल्म का नाम है गोपी किशन, गीत समीर का है, संगीत आनंद मिलन का।

अभी आपने तवायफ फिल्म का ये गाना सुना, इसे गाया था आशा भोसले और साथियों ने, गीत हसन कमाल का था, संगीत रवि का। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे अंतराल के बाद।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में, गीत लिखा इंदिवर ने, संगीत विजू शाह का है।

0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज टीवी और फिल्म अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवा रहे हैं प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल। प्रकृति, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
1: ये बताइए, कहाँ की रहने वाली है, परवरिश कहाँ पर हुई है?
2: मैं वैसे गढ़वाल की हूँ, उत्तराखंड
1: जी,
2: और जन्म मेरा दिल्ली में हुआ था, लेकिन मैं बहुत जगह रही हूँ, जैसे गुजरात भी रही हूँ, चंडीगढ़ भी रही हूँ, दिल्ली भी रही हूँ, बॉम्बे भी, उत्तराखंड भी, मतलब बहुत जगह रही हूँ मैं।
1: अच्छा, कितना लगाव है गढ़वाल की वादियों से?
2: बहुत ही ज्यादा, पहाड़ को कभी भूल नहीं सकता, ऐसा लगता है कि पहाड़ में ही वापस बस जाए, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पे है, सिंस तो बॉम्बे में ही रहना पड़ रहा है।
1: अच्छा, ये बताइए, ये जो अभिनय की यात्रा है, अभिनय का शौक है, ये कहाँ से शुरू हुआ था आपका?
2: मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे बहुत नौटंकी होते हैं, तो मैं हाँ, शीशे में देख के बड़े नाटक करती थी।
1: ये किस उम्र से शुरू किया था?
2: ये पता नहीं, काफी बचपन से शुरू हो गया था।
1: हाँ।
2: तो एक मुझे ऑफर आया, डीडी नेशनल का ही आया, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री था, गुजराती डॉक्यूमेंट्री, तो मम्मी ने बोला कर लो ट्राई अगर तुम्हें करना है तो।
1: तब आप कितने बरस की थी?
2: मैं तब 15 साल की थी।
1: अच्छा,
2: तो मैंने ट्राई कर लिया, उसके बाद से फिर शॉर्ट फिल्म्स वगैरह सब शुरू ही हो गया, फिर म्यूजिक वीडियोस।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: तो पहली जो एक्टिंग थी वो की आपने 15 वर्ष की उम्र में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए।
2: हाँ,
1: जब कैमरे का सामना किया तब क्या हो रहा था?
2: तब दिल की धड़कनें बड़ी हुई थी, अभी भी है।
1: जब परफॉर्म करना होता है या किसी अनजान एक्सपीरियंस से गुजरना होता है तो दिल की धड़कनें तो बड़ी ही होती है।
2: हाँ।
1: स्कूल के जमाने से भी चल रही थी एक्टिंग, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्री के पहले से भी?
2: हाँ, मतलब

0: थिएटर होता था हमारे स्कूल में, प्लेज होते थे, ड्रामा क्लासेस तो चलता ही रहता था। ड्रामा तो कभी लड़कियों का वैसे बंद नहीं होता है, तो हमने सोचा इसे प्रोफेशनली किया जाए फिर।
1: बिल्कुल सही है। पढ़ाई और एक्टिंग का बैलेंस किस तरह से होता था?
0: पहले तो मतलब इतना काम नहीं होता था, तो मैंने कर लिया, मतलब स्कूल इतना जाती नहीं थी मैं, साइड बाय साइड जॉब भी कर रही थी एक पार्ट टाइम, तो मैनेज हो गया, घर पे पढ़ लेते थे। मम्मी भी प्रिंसिपल रहती थी, मम्मी भी पढ़ा देती थी हमें। और कॉलेज में थोड़ा सा दिक्कत हुई, कॉलेज में शूट भी है, एग्जाम्स भी है, बहुत मुश्किल हुई, लेकिन कर लिया,
1: एडजस्ट हो गई सारी चीजें।
0: हाँ, हो गई।
1: मुझे बताइए कि आपने थिएटर की दुनिया में क्या क्या किया है और कदम कब रखे थे रंगमंच की दुनिया में?
0: थिएटर मैंने 2012 में शुरू किया था, चंडीगढ़ में मैंने थिएटर स्टार्ट किया था, कुछ टाइम वहां किया थिएटर, 3 साल वहां किया और 2 साल मैंने दिल्ली में किया।
1: अच्छा, हाँ। तो जब थिएटर में शुरुआत हुई चंडीगढ़ में, रंगमंच की अच्छी परंपरा है, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में, मुझे वहाँ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। कौन से नाटक किए, किन लोगों के साथ किए थे?
0: मेरा सबसे पहला नाटक रामलीला था एक, तो उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं था ये राम लक्ष्मण के बारे में, मैंने कुछ सुना ही नहीं, और मैंने सोचा रामलीला मतलब आज के जमाने में कौन रामलीला करता है, और वो 8-9 दिन चला, और हमारा जो सेक्टर का ग्रुप था वो फर्स्ट आता था हमेशा की तरह, और इस बार भी आया ही था, तो मेरा शबरी के बचपन का रोल था, तो बहुत सारे प्लेस की हमने।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: और इसके अलावा क्या किया?
0: इसके अलावा तो मैं फिर पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में किया, फिर मैंने एक पंजाबी फिल्म भी करी चंडीगढ़ में रह के, फिर मैं हिंदी फिल्म्स की तरफ आने लगी, मैंने हिंदी फिल्म भी करी दिल्ली में आके।
1: अच्छा, पंजाबी फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था? वो फिल्म कौन सी थी और उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला था?
0: उसमें मेरा एक कैरेक्टर था छोटा सा, मुंडिया तो बच के रही फिल्म का नाम है, और ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं था, छोटा ही था, लेकिन मजा आया। मुझे पंजाबी बोलनी आती नहीं थी, इस तरीके से मैंने पंजाबी भी सीख ली।
1: ओ, तो पंजाबी बोलनी नहीं आती थी लेकिन पंजाबी फिल्म की थी, और इसलिए पंजाबी सीखने मिल गई। मुंबई कब आना हुआ था?
0: मुंबई वैसे तो मैं पहले 4 साल 1 महीना रही, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाया मुझसे, मैं कुछ टाइम मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया, फिर वापस चली गई मैं, फिर मैं अभी 2 साल पहले आई हूँ, और हो गई मैं, अब तो सेटल हो गई हूँ, मैंने काफी काम कर लिया, मैंने बहुत सारे एड्स कर लिए, रियलिटी शो कर लिए, और टीवी मतलब फिल्म वगैरह, यहाँ पे मैंने एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म भी करी, उसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकती।
1: ये बताइए कि मुंबई का एक्सपीरियंस किस तरह का है, क्योंकि जब यहाँ कोई स्ट्रगल करने के लिए आता है तो उसे तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो मुंबई में आके रह लिया 5-6 महीने, अगर वो खुद से रह लिया तो मतलब वो पक्का बन गया, बस अब यहाँ रह लिए तो दुनिया के किसी भी कोने में रह लेंगे।
1: तो मुंबई में जो पहला काम आपने सेकंड दौरे में, मतलब पहली बार तो आप लौट गई थी, वो क्या किया था?
0: मैंने टीवी में किया था, मैंने एक जजमेंट किया, मैंने सीरियल, वो भी उसमें भी कुछ टर्म का मेरा रोल है, और मोबाइल फोन का एड्स का, ये सब बहुत किया।
1: टेलीविजन के लिए और फिल्मों के लिए काम करने में किस तरह का फर्क है एक एक्टर के लिए?
0: टेलीविजन में ये होता है कि आपको एक कैरेक्टर मिला है तो वही आपका चलता रहेगा, वही आप करते रहते, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बोरियत ऐसे हो जाता है वही करते हुए। फिल्म में क्या होता है कि आपको बहुत वैरायटीज हैं, कि 1 महीने बाद अब आपको दूसरा काम मिल रहा है तो आपको एकदम से ही दूसरा रोल मिल जाएगा, थोड़ा प्ले करने को मिलता है फिल्म में, और सीरियल में एक ही चल रहा है वो चलता ही रहता है।
1: अपने आप को किस तरह से अपने रोल्स के लिए आप तैयार करती हैं? इतनी जरा सी हैं और इतनी बड़ी एक्टिंग की और फिल्मों की दुनिया है।
0: जब हमें ऐसे कोई पता लगता है कि हमें एक कैरेक्टर आ रहा है, तो हम एक तो उस कैरेक्टर में हमें रहना है, अपने आप को आइसोलेट कर देना पड़ता है पूरी दुनिया से, क्योंकि फिर हम लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फिर, और ऐसा होता है कि हम पूरे एकदम तैयार हो रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, पूरा दिन आप उसी कैरेक्टर में हो कि वो कैरेक्टर हल्का सा छूट ना जाए और अपनी हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे कैमरा के आगे।
1: घर वालों का कितना रोल है आपको यहाँ तक लाने में?
0: घर वालों का तो पूरा रोल है, पूरा सपोर्ट है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी नहीं होती तो शायद मैं ट्राई भी नहीं करती, फिर मैं एक नॉर्मल एक जॉब कर रही होती, क्योंकि मम्मी ने मुझे पूछ के कि तुझे करना चाहिए, तेरे में है वो बात, तू कर सकती है, तो फिर मुझे तब हिम्मत आई कि हाँ।
1: बिल्कुल। अभी मुझे बताइए कि वो कौन कौन से सीरियल्स हैं जिन्होंने थोड़ा आपको नाम दिया, आपको पहचान दी है?
0: एक तो ये मैंने किया था स्वाभिमान किया मैंने, और मैंने जो रियलिटी शोज किए, फिर बिंदास का भी किया था, और कुछ एक दो और भी हैं, तो उनसे मुझे काफी वो हुआ, और एक एड था मैंने किया था फोन का, तो उससे भी मुझे काफी हुआ।
1: क्या अब जिस तरह की फिल्में आ रही हैं और जिस तरह के सीरियल्स आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सब्जेक्ट्स के मामले में और अपॉर्चुनिटीज के मामले में पहले से बहुत ज्यादा फर्क आ गया है और अब मामला थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड हो गया है?
0: पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले इतनी लोगों की एंट्री नहीं होती थी फ्रेशर्स की, अब इतना सब कुछ बन रहा है, मतलब फटाफट, मतलब हमें रोज कास्टिंग के लिए कुछ ना कुछ आ जाता है कि कभी ये कास्टिंग करे कभी वो कास्टिंग करे, और अच्छा भी है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इतने

0: सारे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग आज भी बॉम्बे में भटक रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, और टैलेंट इतना है कि जिन्हें काम नहीं मिल रहा, और मिलना चाहिए उनको।
1: एक लड़की के लिए मुंबई में स्ट्रगल करना कितना मुश्किल काम होता है और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?
0: ये तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। एक लड़की जब बॉम्बे आती है तो सब लोग सोचते हैं कि अपना खर्चा कैसे चलाएगी, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है गंद, ये कहाँ जा रही है रात

0: ये कहाँ जा रही है रात को, क्या हो रहा है, लेकिन अब ऑफ स्क्रीन किसी को मेहनत दिखती नहीं है।
1: यही मैं कह रहा हूँ कि किस तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ता है।
0: वही सबके सामने, आप कितने भी मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, सबके सामने आपको नॉर्मल दिखाना है कि आप नॉर्मल हो, आप खुश हो, आपको बहुत काम मिल रहा है। अगर किसी को नहीं भी मिल रहा, हम दिखा नहीं सकते हैं लोगों को, तो बहुत शो ऑफ भी है इस इंडस्ट्री में, करना भी पड़ता है ताकि काम भी मिलते रहना चाहिए। तो नॉर्मल ही रहो, सबके सामने हंसते खेलते रहो।
1: जी, और आपको ये बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई कोई बहुत खास बात जो आप हमारे साथ बांटना चाहें, जो आपकी जिंदगी की यादगार बात रही हो अब तक के आपके अपने एक्सपीरियंस से।
0: अभी तक तो मेरा भी रिसेंटली हुआ था, ये जब मैं स्वाभिमान कर रही थी तो मेरे कैट का ना एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो उस दिन मैं शूट पे थी और वो सीन चल रहा था कि जब बहू घर पे आ रही है और मैं थाली लेके, मेरा काम वाली का रोल था, तो मैं थाली लेके जा रही हूँ उसका स्वागत करने के लिए, उसमें दिया वगैरह सब रखा हुआ है और खुशी का माहौल है, मैं रो रही हूँ, मैं लिटरली आंसू रो रही हूँ, वो खुशी का माहौल है, और मैं रोते रोते मेरा पैर ऐसे फिसला और वो प्लेट गिरी और वहां पे कारपेट पे वो आग लग
1: ओ ओ ओ ओ ओ
0: गई और मैं बैठे बैठे रो भी रही हूँ और हंस भी रही हूँ। बहुत फनी भी लगा था और थोड़ा डिप्रेसिंग भी था, मतलब अजीब सा ही था। ये सबसे यादगार था एक्चुअली मैंने अभी तक।
1: ये बताइए कि सीनियर्स का बर्ताव नए एक्टर्स को लेकर किस तरह का होता है।
0: अच्छा होता है, अगर एक एक्टर अच्छा है तो सीनियर्स बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, सिखाते हैं। बल्कि जिन जिनके साथ मैंने काम किया, मैं पहले डरी हुई थी, थोड़े बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे मेरे सामने और मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, तो वो लोग जब थोड़ा सा समझाते थे तो मैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, मैंने देखा है।
1: सीख कर आना कितना मायने रखता है।
0: बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको थिएटर करना चाहिए, फिर आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। अगर आपने थिएटर नहीं किया तो आप टेक पे टेक लेते जाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर करके ही आपको इस आगे सिनेमा में आना चाहिए।
1: अब मुझे ये बताइए कि आपने अपने लिए क्या सोच रखा है, मतलब क्या गोल्स हैं, टेलीविजन ज्यादा करना है, फिल्में करना है, डायरेक्शन करना है।
0: मुझे वैसे फिल्म्स करनी है, आर्ट फिल्म्स करनी है।
1: आज के जमाने में एक्टिंग कितना फ्लरिशिंग करियर है या इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है।
0: नहीं, फ्लरिशिंग करियर तो बहुत है, अगर आप एक बार चल पड़े, आपकी गाड़ी चल पड़ी तो वो चल पड़ी, पर लेकिन वो चलाने के लिए गाड़ी आपको इतनी मेहनत करनी है, आपका रोज एक आपको जंग लड़नी है, हजारों एक्टर्स में से आप सिलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि वहां पे लाखों एक्टर्स हैं जो आपके बराबर है और आपकी जितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन आपको ये दिखाना है कि आप किसे सबसे हटके हो, तो मतलब ये रोज एक जंग है,
1: और इस जंग के लिए आपको रोजाना तैयार होना पड़ता है।
0: रोज बहुत टफ है।
1: ऑस्ट्रेलियन फिल्म आपने की, आपने बताया कि बहुत ज्यादा उसके बारे में आप रिवील नहीं कर सकती।
0: हाँ।
1: मुझे बताइए कि फॉरेन क्रू के साथ काम करना कितना डिफरेंट था भारत के लोगों की
0: हाँ।
1: बजाय।
0: मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा बेटर है वो बहुत प्रोफेशनल है अपनी चीज को लेके, अगर उन्हें वो चीज करनी है तो वो बहुत प्रोफेशनली करेंगे। यहाँ पे थोड़ा खिचड़ पिचड़ रहता है कि मुझे ज्यादा बेटर लगा उस क्रू के साथ काम करना।
1: उनका काम ज्यादा सिस्टमेटिक आपको
0: हाँ,
1: लगा।
0: प्लस जो उसमें लीड एक्टर्स थे वो लोग भी दे वर गुड टू एवरीबडी, मतलब जूनियर एक्टर्स भी अगर वो देख रहे तो उनको भी वो ग्रीट कर रहे हैं। मैंने थोड़ा बॉलीवुड में देखा है ये कि जूनियर एक्टर्स को या जूनियर आर्टिस्ट जो भी होता है बैकग्राउंड में, वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कौन है वो, पता नहीं कहाँ से वो उठा के आ गए, जबकि वो भी एक फिल्म का हिस्सा है, अगर वो नहीं होते तो एक फिल्म नहीं बनती है, मतलब वो बहुत मायने रखते हैं। पर वो हॉलीवुड वाले उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बॉलीवुड वाले मैंने नहीं देखे रिस्पेक्ट करते हुए।
1: और टेलीविजन की दुनिया में।
0: टेलीविजन में भी सबकी इज्जत है
1: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों से स्ट्रगल करने के लिए मुंबई आने को तैयार रहते हैं, और हम जब विविध भारती से एक्टर्स या अलग अलग पर्सनालिटीज के इंटरव्यू सुनवाते हैं तो लोगों को लगता है कि अगर ये लोग मुंबई में कामयाब हुए हैं तो हम भी चांस ले सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने एक्सपीरियंस से आप क्या सलाह देंगी प्रकृति।
0: अगर आप एक साल थिएटर कर लिया आपने तो आप जरूर बॉम्बे में सर्वाइव कर लोगे।
1: यानी रंगमंच का बहुत ठोस अनुभव होना बहुत
0: हाँ
1: जरूरी है, तभी जाकर आप एक्टिंग की दुनिया में आगे आए तो बेहतर रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: आपको रंगमंच का अनुभव कितना काम आया है, क्योंकि आपने बताया कि आपने चंडीगढ़ में काफी सारा थिएटर किया था, तो यहाँ आकर वो वाली जो तैयारी है वो कितना याद आती है।
0: बॉम्बे में बहुत कंपटीशन है तो इजीली आपको थिएटर मिलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स भी जो अभी यहाँ पे थिएटर कर रहे हैं, तो आपको पहले यहाँ पे प्रोडक्शन में मिलेगा। और मैंने सोचा था कि यहाँ पे थिएटर आके करूंगी, लेकिन थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में काम अच्छा है, तो फिर मैंने थिएटर का आइडिया ड्रॉप कर दिया।
1: प्रकृति, ये बताइए कि एक एक्टर के लिए ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आप ये मानती हैं कि एक्टिंग जो है वो एक नेचुरल प्रतिभा है या फिर उसको ट्रेनिंग के जरिए संवारा निखारा जा सकता है, बेटर बनाया जा सकता है।
0: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम सब लोग रोज अपनी लाइफ में एक्टिंग करते हैं रियल लाइफ, लेकिन जब कैमरा आता है तो कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वो सामने वाला हमें देख रहा है। लेकिन अगर हमें पता ही ना चले कि कोई हमें देख रहा है तो हम लोग बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं। तो वी

0: ऑल आर बॉर्न आर्टिस्ट, लेकिन उसे ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग और शार्प कर सकते हैं. जैसे एक पेंटर होता है, अगर वो रोज पेंटिंग करे तो वो और अच्छी पेंटिंग बनाता है. तो ऐसे ही एक्टर है, अगर वो रोज एक्टिंग करे तो वो और बेहतर हो सकता है अपनी ट्रेनिंग से.
1: यानी ट्रेनिंग के आज के एक्टिंग की दुनिया में मायने हैं, वो आपको बेटर बना सकती है. अब मुझे ये बताइए कि आज टेलीविजन या फिल्मों में जो रोल्स आपको मिलते हैं अपने करियर के इस स्टेज पर, तो वो रोल किस तरह से आप चुनती हैं, या आपके मन में एक इमेज होती है कि मुझे इस तरह के रोल्स करने हैं, आपने तय कर रखा है कि इस तरह के रोल्स करना चाहती हूँ लेकिन आज उस तरह के सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं?
0: मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहूंगी, अभी इस टाइम मुझे जो आ रहा है मैं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे भी अभी सर्वाइव करना है बॉम्बे में. मेरे पास कोई ऐसे खजाना नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो हमें भी अभी बहुत पैसे चाहिए मेंटेनेंस के लिए. वैसे भी इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा चाहिए, अपने ऊपर ही बहुत खर्चा होता है. तो फिलहाल अभी जो आ रहा है मैं ले रही हूँ, लेकिन आगे जाके मैं बहुत चूजी होने वाली हूँ कि चाहे एक दो साल में एक काम करूँ.
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रकृति, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और आपने हमसे बातचीत की, बहुत धन्यवाद.
2: जानी मानी टीवी और फिल्म अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी. प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई. इसी के साथ आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है.

दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक यादों की परछाइयां। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।

0: फिर डैडी से बात हुई?
1: डैडी घर पे नहीं थे, नीना ये बात पहले से ही जानती थी।
0: तो
1: बस नीना जो चाहती थी उसने पा लिया, हम लोग ऐसे ही मिलते रहे लेकिन डैडी से कभी भी मुलाकात ना हो सकी। फिर नीना ने शादी का जिक्र भी छोड़ दिया। मुझे भी लगा मैं अब उसके लिए कोई खास कशिश नहीं रह गया हूँ, बस जैसे मिले थे वैसे ही अचानक मिलना जुलना बंद हो गया। वैसे कविता का ख्याल है हम दोनों को करीब लाने के लिए नीना ने सेक्रीफाइस की है, लेकिन अपनी उतरन किसी को दे देना दान तो हो सकता है, सेक्रीफाइस नहीं।
0: तो तुम्हें इस आदमी के साथ नीना को देख कर हैरानी क्यों है?
1: इसलिए भाई कि दौलत की जिसको कमी ना हो, खूबसूरती से प्यार करने वाली औरत आखिर इस किस्म के आदमी से शादी करे तो क्यों?
0: क्या पता उसके लंबे चौड़े अरेंजमेंट में ये आदमी महज एक ढाल हो। और
1: वो लोग इधर ही आ रहे हैं।
2: कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? विकी नीना आई है।
1: हेलो नीना।
2: हेलो विकी, अच्छे तो हो?
1: फाइन थैंक यू।
2: इनसे मिलो, माय हस्बैंड मिस्टर लाल।
1: वेरी प्लीज टू मीट यू मिस्टर लाल। हाउ डू यू डू?
0: वेरी नाइस टू मीट यू मिस्टर लाल।
2: अच्छा भाई अब आप लोग बाहर चलिए, जायदा ने तो पूरा मुशायरा जमा रखा है।
3: हाँ चलो ना कभी।
1: आइए मिस्टर लाल,
0: शेर सुनकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी मिस्टर लाल।
1: चलिए आइए।
4: नीना
1: कैसी हो?
3: सिर्फ इतनी सी बात पूछने के लिए तुमने मुझे रोका था?
1: यूं ही, मैं जानना चाहता था शादी के बाद तुम कैसा महसूस कर रही हो।
3: शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है क्या?
1: लोग कहते हैं।
3: मुझे तो ऐसा नहीं लगा।
1: बहुत खुश हो?

0: बेहद। कौन किसी को क्या खुशी दे सकता है, खुशी तो अपने मन से होती है। वैसे मिस्टर डाल से मुझे सब कुछ मिल जाता है।
1: सब कुछ?
0: और अगर कहीं कमी रह जाती है तो आंखें बंद करके तुम्हें याद कर लेती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? छोड़ो, और सुनाओ कीवी से कैसी निभ रही है?
1: कुछ समझ में नहीं आता, कीवी दिन पर दिन शक की और बेहद डोमिनेटिंग होती जा रही है।
0: क्योंकि वो तुम्हें अपना, सिर्फ अपना समझती है।
1: अपना समझने से तो एतबार बढ़ना चाहिए।
0: कोई दूसरा उसकी खुशी में शरीक ना हो, डर भी तो लगा रहता है।
1: जाने क्यों मुझे लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए शायद नहीं बने।
0: तो क्या हुआ, शादी के बाद बन जाओगे?
1: और अगर ना बन सके तो?
0: तो आंखें बंद करके तुम उसके बारे में सोच लेना जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि वो बिल्कुल तुम्हारी अपनी है।
1: दूसरे लफ्जों में जिंदगी भर हम एक दूसरे को धोखा देते रहे।
0: मैं इसे अरेंजमेंट कहती हूँ। इस जमाने में जिंदा रहने के लिए एक सूझबूझ के अरेंजमेंट की जरूरत भावनाओं से ज्यादा है। जिस रफ्तार से हम आगे ही आगे बढ़ रहे हैं वहां रुक कर पीछे देखने वाला इंसान कुचला जाएगा। गुजरा हुआ हर मोमेंट मर चुका है, खत्म हो चुका है। विकी जहां खड़े हो उसी को स्टार्ट मानकर नई दौड़ शुरू करो।
1: शायद तुम ठीक कहती।
0: कम से कम मैंने यही किया है और मेरा ख्याल है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन।
1: लेकिन कीवी
0: बिल्कुल परफेक्ट लड़की दुनिया में कोई है? कीवी में बहुत कुछ है। और फिर मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है।
1: मुझे उससे क्या लेना देना?
0: कीवी उनकी इकलौती बच्ची है।
1: लेकिन मुझे उसके रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं।
0: ना सही, वो तुमको बेहद चाहती भी तो है। तुम क्या उसे पसंद नहीं करते?
1: ना करता होता तो इतना सब ही क्यों?
0: सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा है तुम उससे भागना क्यों चाहते हो?
1: मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
0: क्योंकि तुम वक्त की रफ्तार के साथ नहीं हो। विकी वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा।
2: लोगों की कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए तो जरा बाहर आ जाना, सारा प्रोग्राम फीका पड़ रहा है।
1: नहीं नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। आओ नीना, बाहर चले।
0: चलो। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी ही वकालत कर रही थी कीवी।
2: थैंक्स अ लॉट। लेकिन किसी को हमारी परवाह हो तभी तो।
1: कीवी तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती?
2: क्या समझूं, समझने को रखा ही क्या है। खुद ही ऐसी गलती कर रही हूँ, खुद ही इसे भुगतूंगी भी।
0: क्या बात है कीवी?
2: कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
1: कीवी, कीवी आखिर हुआ क्या है? तुम ये तो बताओ, तुम चाहती क्या हो?
0: बताओ ना कीवी, आखिर क्या चाहती हो?
2: तुमसे क्या छुपा है? अब तो सारा जमाना जान चुका है कि मैं क्या चाहती हूँ, किसे चाहती हूँ। लेकिन लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये
1: वो तुम्हें तो वहम हो गया है कीवी।
2: हाँ हाँ, मुझे ही वहम हो गया है। और तुम क्यों नहीं डैडी से बात करते हो? मम्मी बार बार मुझसे पूछती है, विकी ने प्रपोज किया, विकी कब प्रपोज करेगा, विकी के सहारे कब तक बैठी रहोगी। फ्रेंड्स मिलती है तो किसी भी रिंग को देखकर टोंट करती है, कीवी ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है। तब मेरा जी चाहता है मैं कहीं कूद पर जान दे दूं।
1: ओ कीवी, सुनो कीवी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी जल्दी है। मैं खुद बात करना चाहता था लेकिन लेकिन मैं किसी अच्छे से मौके की तलाश में।
2: मौका मौका मौका, आज से अच्छा मौका और क्या हो सकता था? लेकिन तुमने जानबूझकर देर से आए ताकि ये चांस अवॉइड कर सको।
1: चलो आज की बात छोड़ो कीवी, मैं जल्दी ही किसी रोज।
2: मैं जानती हूँ वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।
1: आएगा कीवी, आएगा।
2: आज ही क्यों नहीं?
1: आज बात ये है, वक्त नहीं रहा। देखो 7:30 बज रहे हैं और 8 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है।
2: मैं पहले ही जानती थी तुम जरूर कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकालोगे।
1: सुनो तो सही।
2: नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मेरे कहने से कौन रुकता है?
1: ओफो, अब तुम ही बताओ नीना।
3: नीना डार्लिंग, अब इजाजत लो। याद है ना कुमार्स के यहाँ डिनर है?
0: यस डार्लिंग, आइए चलें। अच्छा भाई विकी, गुड नाइट।
1: गुड नाइट नीना। गुड नाइट मिस्टर लाल।
3: कभी आइए मिलने।
1: जरूर जरूर। डार्लिंग,
4: तुम डार्लिंग कहते हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से उकताए हुए पति पत्नी हैं। मुझे इस लफ्ज से सख्त बनावट की बू आती है।
5: अरे विकी, तुम यहाँ अकेले ही खड़े हो और वो भी अंधेरे में।
1: हाँ यार, तुम ही रोशनी कर दो।
5: अब क्या और रुकने का इरादा है या चलना है?
1: अरे भाई, मुझे तो जाना है, 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है।
5: तो फिर चलो ना, 7:30 तो कभी के बज चुके हैं। आओ।
6: हैंडसम, हमसे तो आज बात भी नहीं की।
1: कभी इतना बोर करूंगा मैडम की कान पकड़ लोगी।
6: किसके?
1: अपने और किसके?
5: वेल सेड विकी।
6: चुप करो हार्टबीट।

0: साइडा, कीवी कहाँ है?
1: लीजिए, वो हमसे पूछते हैं उनका दर्द दिल कहाँ है।
0: मजाक छोड़ो, मुझे जाना है भाई।
1: गेट पर होगी नीना को सी ऑफ करने के लिए,
2: तो चलो चले। मैं
1: तुम भी जा रहे हो हार्ट बीट?
3: तुम कहो तो रुक जाऊं।
1: कहा
0: विकी, गुड नाइट। गुड नाइट, अपनी फ्लाइट अभी लेट है।
4: अच्छी बात है तुम्हारी किस्मत। गुड नाइट।
1: गुड नाइट हैंडसम।
4: गुड नाइट जायदा।
5: जा रहे हो विक्की?
6: अरे भाई इतनी जल्दी?
0: मजबूरी है अंकल, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं बॉम्बे से, 8 बजे फ्लाइट आनी है, एयरपोर्ट उनको रिसीव करने के लिए पहुंचना है।
6: फिर तो जरूर जाओ।
0: अच्छा केवी,
1: थैंक्स फॉर कमिंग।
0: गुड नाइट एवरीबॉडी।
6: गुड नाइट।
0: ये लड़कियां इतनी ना समझ क्यों होती हैं?
1: तारीफ तो तुम क्या करोगे, बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा होता है ना, न मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार भूल जाता है।
7: I IT announces the arrival of their flight number 181 from Bombay. Thank you.
0: Good evening, sir.
8: Good evening, Vikram. How are you?
0: Very fine, sir. How was your journey?
8: Comfortable. Very comfortable indeed.
0: Gaadi idhar hai, sir. Aapka saman?
8: Bas yahi handbag hai.
0: To aaiye chale. Pehle hotel hi chale na?
8: No, no. Pehle main Kumar's ke haan dinner ke liye jana chahunga. Wahan party se baatcheet karke hi hotel jaunga. होटल को टेलीफोन वहीं से कर देंगे।
0: राइट सर।
8: विक्रम, तुम्हारी सेल्स की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम थोड़ी सी मेहनत और करो तो हम सेल्स को और बढ़ा सकते हैं।
0: यस सर, मैं कोशिश करूंगा।
8: आई डोंट बिलीव इन कोशिश विक्रम, ये होना ही चाहिए। मैं कल सुबह तुम्हें इसका तरीका बताऊंगा। विक्रम, तुम्हारा ऑफिस अभी भी कई मामलों में बहुत ढीला है, उसे टाइट करो विक्रम, टाइट, खूब टाइट करो।
0: यस सर।
8: मुझे सुस्त रफ्तारी बिल्कुल पसंद नहीं विक्रम, तुम गाड़ी बहुत स्लो ड्राइव करते हो।
0: सड़कें ठीक नहीं है।
8: सड़कें ठीक न होने से क्या होगा, गाड़ी जल्दी पुरानी हो जाएगी। अगर हिसाब लगाकर सोचो तो तुम समझोगे कि वक्त की कीमत गाड़ी की कीमत से ज्यादा है।
0: यस सर।
8: हमने एक बार एक पूरा डिपार्टमेंट खोला था जिसका काम सिर्फ यही था कि हिसाब लगाए और देखे कि किस काम में कितना वक्त लगता है।
9: फिर उस वक्त से हम आगे ही आगे भाग रहे हैं, वहां रुककर पीछे देखने वाला इंसान कुछ ला जाएगा। विकी, जहां खड़े हो उसी को स्टार्ट मानकर नई दौड़ शुरू करो, नई दौड़ शुरू।
1: लेकिन सभी घोड़े तो रेस में फंस गए
9: और तुम फिर उसके पीछे भागते रहोगे, जीवन भर भागते रहोगे। विक्रम, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा, भागना होगा।
1: मम्मी बार बार मुझसे पूछती है विक्की ने प्रपोज किया, विक्की कब प्रपोज करेगा, विक्की के सहारे कब तक बैठी रहोगी, कब तक बैठी रहोगी। मुझे खड़खड़ाते हुए कारखाने की तमन्ना नहीं, मैंने तो एक छोटे से पुरसुकून घर का सपना देखा है, पुरसुकून घर का सपना।
9: और इसी भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी तो अलग अलग चीजें हैं। कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू, कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू।
1: ये शोर, ये हंगामा, ये कहते हैं इतनी भीड़ भाड़ क्या कोई इसलिए पार्टी अरेंज करता है कि खुद अकेलेपन का शिकार होकर एक कोने में दुबका पल पल किसी के आने का इंतजार करता रहे, किसी के आने का इंतजार।
9: बहुत कुछ है और मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है, मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है।
1: कई तरीके हैं लेकिन तुम जानबूझ कर, हटो, देखो कोई आया है, देखो कोई आया है।
8: अरे ये क्या हुआ विक्रम, तुम रुक क्यों गए?
0: सामने ट्रैफिक लाइट में स्टॉप सिग्नल है।
8: ओह देखा, ये भी वक्त के गलत इस्तेमाल की बात है। अगर इंसान सही वक्त पर स्टार्ट करे तो तमाम ट्रैफिक लाइट्स ठीक मिले। गो, चलो।
0: यस सर।
8: और अब तेज चलो, फास्टर फास्टर फास्टर विक्रम, फास्टर।
0: यस सर।
9: विक्रम, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा,
1: भागना होगा। मम्मी बार बार मुझसे पूछती है विक्की ने प्रपोज किया, विक्की कब प्रपोज करेगा, विक्की के सहारे कब तक बैठी रहोगी, कब तक बैठी रहोगी।
8: विक्रम, आई सिर्फ

0: Panta! Panta!
1: क्या हुआ विक्रम, तुम अचानक रुक क्यों गए? तुमने तो गाड़ी भी बंद कर दी।
2: यस सर।
1: अरे क्या हुआ, तुम परेशान से दिखाई देते हो।
2: सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
1: हाँ,
2: सर
1: हाँ।
2: मैं शादी करवा रहा
1: हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ?
2: कविता।
1: कविता
2: स्ट्रॉन्ग टायर्स वाले मिस्टर गिडवानी की लड़की।
1: ओह स्ट्रॉन्ग टायर्स, गुड गुड, वेरी गुड मैच विक्रम, कंग्रेचुलेशन।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: गाड़ी फिर से स्टार्ट करो वरना देर हो जाएगी।
2: यस सर, यस सर।

यादों की परछाइयां। इस नाटक का अभी आपने चौथा और अंतिम भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी जो शहीद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे

0: स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: आइए अब सुनते हैं गजेंद्र वर्मा की आवाज में टेबल नंबर 21 फिल्म का गाना। गीत असीम अहमद अब्बासी का है, संगीत गजेंद्र वर्मा का।

0: हा आहे. हा अहवाल विवाह घटस्फोट पोटगी मुलांचा ताबा आणि मालमत्तेचे हक्क यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतो. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागातर्फे जागतिक पर्यावरण दिन अभियान 2026 अंतर्गत इतवारी रेल्वे स्थानकावर वातावरण बदल या विषयावर पथनाट्य सादर करण्यात आलं. याद्वारे भारत स्काउट्स अँड गाईड्सच्या मोतीबाग ग्रुपच्या स्काउट्स आणि गाईड्सनी पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांविषयी जनजागृती केली. बुलडाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यात भारत सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या अनधिकृत HTBT कापूस बियाण्यांची अवैध वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्या टोळीला कृषी अधिकाऱ्यांच्या पथकानं रंगेहात पकडलं. या कारवाईत एकूण 8,58,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बॅडमिंटनमध्ये PV सिंधू आणि लक्ष्य सेन यांनी वेगवेगळ्या विजयांसह उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला तर HS प्रणॉय आज सिंगापूर ओपनमधून बाहेर पडला. दोन ऑलिम्पिक पदकं जिंकलेल्या सिंधूनं आपल्या दुसऱ्या फेरीच्या सामन्यात जपानच्या रिको गुंजीवर विजय मिळवला. आता उपांत्यपूर्व फेरीत सिंधूचा सामना कोरियाच्या अव्वल मानांकित एन से यंगशी होईल. दुसरा मानांकित कुणलावुत विदित सरनं 2 गुणांनंतर सामन्यातून बाहेर पडल्यानं लक्ष्य सेननंही उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. आता त्याचा पुढील सामना जपानच्या कोकी वातानाबेशी होईल. विदर्भात उष्णतेची लाट कायम असून आज वर्धा इथं सर्वाधिक 46.8 सेल्सिअस इतक्या कमाल तापमानाची नोंद करण्यात आली. त्याखालोखाल नागपूर इथं 46.4, गोंदिया 46.1, चंद्रपूर 45.4, ब्रह्मपुरी आणि अमरावती 45.2, अकोला आणि गडचिरोली इथं 45, भंडारा 44.8, यवतमाळ 44.4, वाशिम 44, तर बुलढाणा इथं 41.2 सेल्सिअस इतक्या कमाल तापमानाची करण्यात आली. याबरोबरच हे ठळक बातमीपत्र संपलं. यापुढील ठळक बातमीपत्र उद्या सकाळी 10:58 प्रसारित करण्यात येईल. नमस्कार.
1: विविध भारतीचं हे नागपूर केंद्र आहे. रात्रीचे 9:45 होत आहेत. काही क्षणातच आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जाणाऱ्या बातम्या आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत. प्रत्यक्ष बातम्यांची
2: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम. गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे. केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की. प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन. मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया. वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत. और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे. समाचार विस्तार से. गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है. गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही.
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है. ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी.
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी. वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है. श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है.
4: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया. अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने

0: अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है हर फैसले से पहले एक सवाल क्या मैं तैयार हूं अगर जवाब है हां तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं उनको मिला के तो 4,00,00,000 बहुत पहले पूरे हो चुके हैं तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव

ने आज नई दिल्ली में एआई पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एआई शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के

विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई

अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अर्पण फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में अब्दुल्ला फिल्म का गाना सुना, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और अनिट की आवाजों में सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में क्रांति फिल्म का गाना, गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

नबू खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता, सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

0: महबूब खान पर शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दर्द दिल का चिराग गोया बड़ी मुश्किल से जलाया है, आज फिर बेताबियों में खुद को घिरा पाया है। मोहब्बत के नशे मन में उनके कदमों के निशान ढूंढते हैं, फूलों में ओस की नाजुकी नगमों में तराना ढूंढते हैं। दिल के आंगन में मेरे चुपके से आता है कौन, मेरा सब्र हर घड़ी यूं आजमाता है कौन।

ये इंतजार भी अजीब शे है, हर पल दिल उनके हुजूर ही रहता है। खास कुछ बेताबियों के निशा देखे कहीं कहीं हमने, है चांदनी के शरारों सा शफाक हुस्न उनका। कलियों की सादगी कांधों पे करवटें लेती जुल्फें, लबों पे मुस्कुराहट, तो भला फिर ऐसी तस्वीर कहाँ।

दिल ने जब जब पुकारा है, बात क्या चाहिए, सब कुछ मोहब्बत पे वारा है। ये ख्वाब नहीं अफसाना हकीकत है, दो घड़ी मिल बैठें, चांद से आंखें मिलाएं, चलो कुछ देर के लिए दुनिया से जुदा हो जाएं।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये खुशबू ए नसीम, ये सितारों की रोशनी, ये शबनम के कतरे, ये फूलों की बहारें हैं फिजाओं में, ये नजारे जैसे चनार के पत्तों पे लिखी मोहब्बत की कोई इबारत हो। क्या जानिए क्या दिल का हाल होता है, बूंद जब लरसती है बादलों की घटाओं से।
1: न झटको जुल्फ से।

दिल का मामला है, हरफों में कब बयां होता है, ये जिगर का तीर है, मुश्किल से निकलेगा, जहां भी साथ निकलेगी, अगर ये दिल से निकलेगा।

की मुस्कुराहट की कसम खा के ये हवाएं चलती हैं, शबनम ने इन्हीं होठों से जरूर ताजगी चुराई होगी, गुलों ने हवा की लाली आपसे ही पाई होगी, रात फूलों में भंवरों का कैद हो जाना, चुपके से चांद का तकना, मोहब्बत शय ही कुछ ऐसी है, तेरा मगरूर हो जाना, मेरा मशहूर हो जाना।

आज के छह गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लता मंगेशकर के गाए हरियाली और रास्ता इस फिल्म के गीत के साथ ही आज का ढलती जाए रात ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, देश की सुरीली धड़कन। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार प्रतीक्षा समाचारों की।

0: विविध भारती का ये नागपुर केंद्र है। रात के 11:05 और 12 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए पेश है चंद बेला के फूल।
1: बाजू

0: से जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल अभी आपने सुने थे। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन और फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी।

किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत स्वर्ग नरक फिल्म के लिए। विविध भारती पर इस समय जारी है कार्यक्रम बेला के फूल। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अनुभव फिल्म का ये गीत, गुलजार का रचा हुआ, कनु रॉय का संगीत, गीता दत्त की आवाज़।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का रचा हुआ ये गीत सितमगढ़ फिल्म से। सुर में डाला है आर डी बर्मन ने।

और अब सुनते हैं मौसम का हाल। बीते 24 घंटों में नागपुर का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस चौसा से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस चौसा से 0.4 डिग्री कम था। आने वाले 24 घंटों में नागपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में दिन भर गर्म हवा की लहरें चलने की संभावना। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। ये था मौसम का हाल। FM बैंड 100.6 MHz पर आकाशवाणी नागपुर सह विविध भारती केंद्र है। रात्रि से